हारून लांत्रा दसम से तीसरा तरीसी दे देदास देखदा को श्रीलंका बाइला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान अगत अवरणीय गायक होगे सतुटुमत नर्तन में जनता और लंगावन गायन शैली निसा ओ दशक गणनावक जनप्रियत्व इहलिंग सिटिया बाइला संगीत नव रसयक नव शब्दक सा वेदिका संग सजीवीकरण गिना कलाकार मैनिके मालिकावे सीनी मल्ली सीता मन में मल मैनिके वनि गीत उगे नामे अवरणीय कला उगे गायन शैल सरल सतुट सा जनताव समग सृजु संबंधक अतिकल विलासिताव किं प्रीति बुना विविध संगीत खंडायम समग वेड करमिं श्रीलंका बाइला संगीत वगेम अनिकुत गीत जात्यंत्र वेदिका वलट गिनगिय कलाकार हरुण लंत्रागे गीत अदत उत्सववल विवाहवल सह सतुट अवस्थावल अनिवार्यं अमुत्ते सतुट नर्तनीय सह जीविते रसे मतक करवन अमरणीय अंडाक

टोनी हसन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद्रेट आदरणीय गायक ओगे सतुटुमत नर्तनमय वेदिका सजीवीकरण गायन शैली निशा ओगे बाइला सा अनिकुत गीत लोक प्रसिद्ध नामक बहुत पत्तुना इदस नम से हत्यावत असुअ दशके बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोल्ट तिबू सरलत्व सतुट सा जनता व समग सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषात्व गता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वल्दे ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल पायनियर्स अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय राशे मतकरण अमरणीय हांडा

प्रिया सूर्यसेन श्रीलंका जनप्रिय संगीत अतिशय प्रियतम गायक दशक गणनावक जन हृदय लंगा कलाकार ओगे मृदु सुवदन संवेदी हंडत सरल गीत रसयात निशा ओगे गीत अदत जनप्रिय आयमी नोवी जीवमान पवतिन हत्या वसुव दशके प्रेम गीत संवेदी गीत सा जनप्रिय गीतों से विशाल जनप्रियत्व लबागत हो गायन शैली सरल नियतमानी सा हदवत सुजम लंगावेन विलास सितावकिंग प्रीतिपूर्ण निशा सिनेमा गीत रूपवाणी गीत सा वेदिका संगीत ओसे ओह श्रीलंका संगीत अमरणीय सटाणक तबुआ प्रिया सूर्यसेन के गीत असन विट अदत सितट सोयक सिनेहासक सा अमरणीय मतक सोंदक लबिनुआ